0: मुख्तार जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है, तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं, और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: ये है रेडियो SBS, रेडियो SBS, रेडियो SBS।
1: दीदी आप उससे भूल जाइए, इसी में उसकी भलाई है। पापा नहीं मानेंगे।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मैं चल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और यहां से ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लोसियों का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तारीख नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन जरूर आप सुनते ही रहना।

अहद बसंद किया है। भजन यात्रा की खास प्रोग्राम में जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई, तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर, हरिओम शरण जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

से बम्बेम आसरों मीठे हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं। चले प्रोग्राम में सुंदर सा राम जी का भजन बस पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा श्री राम जी का भजन।

सुंदर सा श्री राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में विपिन सचदेव की आवाज में। आपकी बार एक सुंदर और अति सुंदर श्री हनुमान जी का भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है नरेंद्र चंद।

0: इस सुंदर सा आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल की आवाज में। सुनने वालों यहां तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन और एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: रेडियो SBS wens je een heel fijn weekend. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ पुरानी नख़मे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और बहुत सी सुनने वाले होते हैं जो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ भी पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस सुनते हैं। तो स्पेशल आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चलिए प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना, पहला गीत जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। ये काफी पुरानी फिल्म का गीत जो पेश किया जा रहा है।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना लेकर। गाना कबूल है मेरी भीगी भीगी सी सॉन्ग बाय द मैन विद द एफ क्वीन वॉइस

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई मेरी भीगी भीगी सी। रेडियो एसबी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

अब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे एक फिल्म 1952 का रिलीज किया हुआ फिल्म। फिल्म का नाम है बाउजू बाउरा। उसी फिल्म का ये सॉन्ग पेश किया जा रहा है, ये गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद

गाना पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। अभी आपने सुना तू गंगा की मौज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और चलिए आपकी बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: इसमें ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, दिल में बजी है प्यार की सहनाइयां। अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की ओर।
1: देखिए क्या ढूंढते हैं,
0: और गाना का बोल है अपनी भी क्या जिंदगी है। मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

जिंदगी है, द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकीस की आवाज में ये खास गाना आज की प्रोग्राम में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकीस के बाद हम आपको ले चलेंगे मन्ना डे की ओर, मन्ना डे की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है आनंद, आनंद फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में।

Anan. Purani film Anan ka geet pesh ki gayi song by Manna Day ki awaaz mein abhi aapne suna. सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60. मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना.

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट की जरिए अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार हम आपको ले चलते हैं फिल्म अभिमान।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में सौंभाई किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और एक काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुन वालों की सेवा में लता जी की आवाज में।

इसकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में अभी बार तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। चमका चमका सुबह का तारा,

0: लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना, फिल्म का नाम सुजाता।
1: दोनों बातें एक ही आवाज में ऐसी खूबसूरती से समाती हैं और जो कुछ भी गाते हैं ऐसी सरलता से गा जाते हैं जैसे कुछ भी प्रयास न करना पड़ा। यूं तो इन्होंने बहुत से गीत गाए हैं लेकिन ढूंढ लाया हूं ये गीत मैं तेरे लिए।

रेडियो वेस में इसकी सर ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसर उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो वेस में इसकी सर ये जो पेश की गई। 10:12 वेटेड हो चुका है, मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है और रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, 9 मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि कल मातृ दिवस का दिन है, मदर डे का दिन है। सभी को अभी से बधाइयां पेश किया जा रहा है मातृ दिवस के मौके पर जो कल 10 मई को है। और आप सभी सुनने वालों को ये खबर किया जा रहा है कि फिर 20 मई जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोई में और स्पेशल मातृ दिवस के मौके पर मदर डे के मौके पर 15 यूरो कोर्टिंग, हाँ 15 यूरो 15 यूरो कोर्टिंग आपको दिया जा रहा है हर एक टिकट पर और वो भी कोर्टिंग्स कोड, हाँ इस कोड द्वारा MOM 2026 इस कोर्टिंग्स कोड के जरिए आपको हर एक टिकट पर 15 यूरो कोर्टिंग दिया जा रहा है जो भी नौटियाल का कॉन्सर्ट के लिए जो 24 मई रोटरडम आहोई में बस पेश होने वाले हैं। और इन दिनों टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है i-tickets.com उसी वेबसाइट के जरिए जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। तो कल मातृ दिवस का दिन है तो चले ये खास गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है कि माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। मातृ दिवस के मौके पर ये गाना पेश की गई कल, जबकि 10 तारीख मई है, मुडर डाक का दिन, मातृ दिवस का दिन है, तो ये खास गाना आप सभी माताओं के लिए पेश की गई बधाइया ही बधाइया के साथ। यही आसरा उम्मीद लेकर के कि कल जब भी मुडर डाक का दिन है, आपकी बच्चों जो है, लड़कन जो है, आपको ढेर सा प्यार दुलार दे। सुनो बलू, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक 28 साल अख्तन ट्विन तक यार हुआ है, आज 9 तारीख में ठीक 28 साल अख्तन ट्विन तक यार हुआ है कि द मैन विद द गोल्डन वॉइस मरहूम तलत महमूद साहब ने इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। आज 9 तारीख में है, 9 तारीख मई 1998 में 1998 में तलत जी का वफात हुआ है। और हम किसी को शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहेंगे

और हमेशा संगीत की दुनिया में जब भी कुछ होता है या हुआ है, हमें हमेशा इतला करते रहते हैं। अनुरेश, शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमेशा हमें हर एक इंफॉर्मेशन इन्फो देते रहते हैं, किसका मृत्यु हुआ है, कब हुआ है, वफात कब हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशंस आप देते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, और आपको, आपकी पूरा परिवार को एक खूबसूरत और सुहाना वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, 28 साल हुआ है कि द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। आज 9 तारीख में ठीक 28 साल हुआ है, 28। तो चले तलत जी को याद करते हुए एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज 9 तारीख में 28 साल हुआ है कि द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है और आज उनकी याद में कुछ गाने बस पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम उत्रेख लाइट सराइन में गिरधारी स्त्रात, हाँ गिरधारी स्त्रात। राजन गिरधारी भी उत्रेख लाइट सराइन गिरधारी स्त्रात से बस हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को बस एक खूबसूरत सुहाना वीकेंड बस पेश कर रहे हैं पूरा परिवार राजन गिरधारी। और आज के प्रोग्राम में तलत महमूद जी की याद में भी एक खास गाना मांग किया है, चले मिलकर सुनते हैं। गाना का बोल है, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती। स्पेशल गाना तलत जी की याद में है।

रेडियो SBS की जरिए तलत जी की आवाज में, तलत महमूद की याद में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और मांग करने वाला था खास तौर पर यूट्रेख लाइट सरेन गिरधारी स्त्राद से राजन गिरधारी और उनका पूरा परिवार, ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया आप सभी सुनने वालों के लिए और शुभ दिन बस पेश किया है। तो चलिए एक और गाना तलत जी की याद में, आज 9 तारीख में ठीक 28 साल 28 यार हुआ है कि तलत जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका गाने अभी तक काफी हिट है, जैसे कि ये गाना जो खासतौर पर फोर ब्यूरो की रहने वाली सोनिया ने मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए, रेडियो SBS का पूरा टीम के लिए, तलत महमूद जिंदगी देने वाले सुन, फोर ब्यूरो की रहने वाली सोनिया की मांगी हुई गाना। शुभ दिन, शुभ वीकेंड सोनिया, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

पास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली फोर ब्यूरो की रहने वाली सोनिया ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, बहुत सी सुनने वालों है दुनिया की कोने कोने में इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, हम देख रहे हैं बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम रेडियो SBS का बस इस वक्त सुनते हैं। मजा भी आता है प्रोग्राम चलाने में, इसलिए कि हमेशा की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया धन्यवाद। अगर आप सभी ना होते तो किस तरह से हम 40 साल से ज्यादा रेडियो SBS का प्रोग्राम को चलाते हैं। सिर्फ आप लोगों के सहायता से, आप लोगों के मदद से, ये प्यार आप सभी जो हमेशा देते आए हैं। और यही प्यार के जरिए ये प्रोग्राम भी, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, 40 साल से ज्यादा आपके लिए पेश किया जा रहा है। सर है 10:00 प्रोग्राम में 4 मिनट वेटेड हो चुका है, 4 मिनट ओवर हाफ 11। मौसम आज का कितनी खूबसूरत सुहाना मौसम है, और कल जबकि मात्र दिवस का दिन है, मुडा डाक का दिन है, तो कल मौसम इसी तरह से रहेगा। हाँ, खूबसूरत सुहाना मौसम रहेगा। तो चले एक गाना और तलत जी के आवाज में बस पेश किया जा रहा है, और गाना का बोल है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बस तुम्हारी कसम। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद जी।

खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए और वो भी सिर्फ रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना बस पेश हुआ है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 0332666611 ऐप भी आप कर सकते हैं इसी डार्की नंबर पर। कह दो एक बार सजना

सुरवलू बाहर की ओर देखा जाए मौसम तो इतना हसीन इतना खूबसूरत सुहाना मौसम है। कुछ सुरवलू है जो डे अबे प्लस द्वारा अपना मोटरकार में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और खबर किया है कि आवाज साउंड जो है बड़ी ही खूबसूरत साउंड में रेडियो SBS का प्रोग्राम डे अबे प्लस द्वारा बस सुनाई देता है। शुक्रिया धन्यवाद आपके रिएक्शंस के लिए, प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। शहर उत्तरा से ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है। अब की बार गाना होगा मेरा दिल ये पुकारे की तू आजा। नई म्यूजिक में नई आवाज नई

मेरा दिल ये पुकारे आजा। सुनने वालों अभी रिक्लाम होगा न्यूज मौसमी समाचार और फिर से इंफॉर्मेशन, उसके बाद शनिवार है लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। हमारा प्रोग्राम 2 बजे तक रहेगा जरूर, और जरूर सुनते ही रहना। दून अखबे और उसके बाद खबरें बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में, चाहे पास हो चाहे दूर हो। बेस्ट गाने बेस्ट

दूर हो या चाहे दूर हो चाहे पास हो, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना और उसके बाद खबरें होगा प्रोग्राम में। खबरें के बाद लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा, लोकल टाइम का प्रोग्राम भी 2 बजे तक। आप सभी को अनहेल खुड़ मेरा बस पेश किया जा रहा है। मेरा की ओर हम सभी

रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर तुरंत हम आपको ले चलते हैं। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और पहला गाना होगा हरीश खान की आवाज में, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और गाना का बोल है छूकर मेरे मन को। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, रखिलियो और

में है तू, धड़कन में है तू, पेश की गई प्रोग्राम में रखिलियो और साथियों की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में विम डमरी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए विम डमरे की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार प्रोग्राम में सतीश

रेडियो SBS के जरिए सतीश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, लोकल टाइम का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में मरहूम नदीम खान की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक मेरेंगे मैथिली पेश किया जा रहा है। मरहूम नदीम खान की आवाज में

और रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611 और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और पेश हुआ है खास तौर पर लकी सिंह की आवाज में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस आज के लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं शहीद वाहिद हुसैन और मधु की आवाज में एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सहित वाहिद हुसैन और मधु की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीते के गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। चलिए अब की बार ये गाना की ओर।

आवाज में पेश की गई आसरा उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आखिरी घंटे का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक आप सुनते ही रहना। विनेश प्रोग्राम में सुना सुना लागे गाना जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। विनेश के बाद मिका सुखू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार संदीप की आवाज में गाना पेश होगा। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। शेड्यूल ट्रैक से ये प्रोग्राम हमेशा और सालों से लाइव के जरिए पेश किया

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और बाकी हर एक कामों काज के लिए 24 पर दाग बराबर एक बार होता है रेडियो SBS का कंटोर का टेलीफोन नंबर 030-265-6560। धीरज की आवाज में अब की बार ये गाना

प्रयास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मिस्टर विका की आवाज में हर हर के दाव। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS।

विका की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में प्रशांत की ओर हम आपको ले चलते हैं। प्यार दीवाना होता है, रेडियो SBS की जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

होता है। प्रशांत की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शेड्यूल ट्रैक से रेडियो SBS का प्रोग्राम सालों से पेश किया जा रहा है और आज भी वही स्टेशन का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में मिस्टर सतीश होगा, सतीश बिंद्राबन कोकोलांपू, आपके बार गाना जो पेश किया जा रहा है।

असरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। असरो मीठे आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार धीरज की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना जो होगा कम हैदकास्त। आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म होने

मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बैठा आपका खिदमत गुजार अबीन। सभी सुनने वालों जो तार करके अपना रिएक्शंस दिया है, कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय टिल टमोरो।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: Tjura kedumera, guria cheli. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal, en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyar Te Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: Ik heb ze pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल है द फिल्म सनक। हाँ तो फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैथ द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jibin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

भर दो झोली मेरी, वास्कोसोंगदोर अदनान सामी खान कवाम आउट द फिल्म बजरंगी भाईजान। अत फोहंत लीजिए एन अत प्रोग्रामा गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस गजोंगदोर शान एंड अलकायाचनिक कम्स आउट द फिल्म तलाश एंड इट इज तूने कहा जब से हां।

मुझे साजन के घर जाना है। इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंकवा द फिल्म लज्जा। Het volgende liedje in het programma Giet Onkeleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Basik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

0: मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया आवाज आवाज फिल्म मुझे कुछ कहना है। दिल्ली तेज खजोंदोर कुमार सानू एंड प्रीति आवाज फिल्म यादें कम तो फोन लीजिए फिर रेडियो SBS। जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। बेहतरीन गाना आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म मैंने दिल तुझको दिया है से। तो अब आप सुनिए फिल्म शुभ मंगल सावधान से अरिजीत सिंह की आवाज़ में राख।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: बीबी को बेस पसंद है।
1: फिल्म सुल्तान से आपने सुना प्रोग्राम गीतों के लहर में विशाल ददलानी और बादशाह की आवाज में बेबी को बेस पसंद है। और अब आप सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में फिल्म रईस से जालिमा।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

फिल्म बद्री की दुल्हनिया से आपने सुना तम्मा तम्मा अगेन, और अब आप सुनिए ढाकर फिल्म दंगल से रफ्तार और प्रीतम की आवाज में।

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादिया मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

इंदु की जवानी है फिल्म का नाम, और अभिनेत्री है कियारा आडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए, और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहाँ से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न

0: हिसाब से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर।
2: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे, करते थे करते हैं हम, उम्र भर करते रहेंगे। इस अर्धफिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। Dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Padmanabhan. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal. Uit de film Panipat komt Sapna Hai Sach Hai.

बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।